0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 6747702 V23।
1: लाइसेंस नंबर
2: 10394। तंदूरी तंदूरी खाना खाना है ते तंदूरी बॉयज ही जाना है। बड़ा स्वाद वाला फ्लेवर्ड फूड मिलता है। चिकन टिक्का, तंदूरी श्रिंप, तंदूरी फिश, मलाई चाप, तंदूरी मोमोज, ते हां पनीर दी भुर्जी बिल्कुल ना भुलिया जे। लोकेटेड ने 7171 टोरब्रम रोड दे उत्ते, ते दूसरी लोकेशन मैकलोगलन एंड क्वीन ते 905-956-2111 तंदूरी बॉयज।
3: मैनू पता तुहाडी जिंदगी खुशहाल है ते खुशहाल ही सोहनी लगती है, पर जेकर कोई सीरियस एक्सीडेंट हो जाए या फिर किसी तरह की क्रिटिकल इलनेस का हो जाओ शिकार, तो कौन भरेगा तुहाडे घर की मॉर्गेज, कित्थों आएगी इनकम, किवें चलेगी जिंदगी की गड्डी अगे। अपनी इंश्योरेंस जरूर करवाओ, कॉल करो उमरप्रीत चावला नू, जिन्हां तों मॉर्गेज इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस करवा सकदे हो, ते नाल ही विजिटर वीजा इंश्योरेंस, सुपर वीजा, ट्रैवल इंश्योरेंस, आरईएसपी ते होर इन्वेस्टमेंट्स लई। हुणे करो कॉल उमरप्रीत चावला नू 6474461616। उमरप्रीत चावला।

0: ਏਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਫਲ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੈਠੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਇਕੱਠੇ ਗਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ। ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀ ਗਲੋਬਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੋਲਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੀਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਯੂਨੀ ਗਲੋਬਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਤੋਂ। ਸਾਰਾਂਸ਼ ਜੀ ਵੈਲਕਮ।
1: ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸਭੀ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।
0: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ?
1: ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ।
0: ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਰੀਏ, ਓਨੈਸਟੀ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਫ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਜੀ।
1: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਨਾਂ ਲਾਲਚ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ।
0: ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੋ ਮਿਲਣਾ ਨਸੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਆਪਾਂ
1: ਸਾਰਾਂਸ਼ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆਈ
0: ਜੀ,
1: ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਸੇਇੰਗ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗਯ ਸੇ ਅਧਿਕ, ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਬੋਲਾ ਨਾ,
0: ਸਮੇਂ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗਯ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਤਾ, ਏਦਾਂ ਸੀ ਕੁਛ?
1: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਹੀ,
0: ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਨਾ ਲੋਨ ਦੀ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ ਹੀ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜੀ?
1: हाँ जी, गवर्नमेंट ने अपनी एडुकेशन की पॉलिसी में चेंज करा है
0: जी,
1: और नई पॉलिसी आज से इम्प्लीमेंट हो गई है 1 अगस्त से, और इसमें लाइक लोन आएगा 0% पे बिना क्रेडिट चेक के। ग्रांट्स गवर्नमेंट ने मोस्ट ऑफ द ग्रांट्स बंद कर दी हैं, बट लोन सिग्निफिकेंट अमाउंट का है, 0% पे है और बहुत टाइम बाद रिपेमेंट स्टार्ट है। ब्याज दर 2.5% है साल का, 2.5 साल बाद जो पे करना स्टार्ट करेंगे, मतलब 0 या 2.5%, दैट्स द ब्याज दर, नो क्रेडिट चेक।
0: अच्छा, 2.5 साल बाद शुरू होएगा जड़ा परसेंट लगना, उस तो पहला 2.5 साल 0% इंटरेस्ट थे?
1: बिल्कुल जी, ऐसा ही है, और विदाउट कोलैटरल। जैसे आपको बता रहा था, लाइन ऑफ क्रेडिट लेने गया बैंक में, तो $70,000 की लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए उन्होंने पर्सनल गारंटी ले ली मेरी।
0: हाँ।
1: तो मेरा घर उठा लेंगे अगर पैसे नहीं दिए उनके। मैंने कौन से पैसे मारने हैं।
0: हाँ।
1: लेकिन उन्होंने साइन करा लिया कि भैया पर्सनल ही है वो, है ना।
0: हाँ जी।
1: मैंने सोचा यार, हम जो काम कर रहे हैं उसमें लोगों को 1-1.5 लाख, 2 लाख तक फंडिंग आती है, लोन आता है, ग्रांट आती थी, चलो पहले।
0: हाँ जी।
1: लोन आ रहा है, उसमें भी पर्सनल गारंटी है ही नहीं, ये बैंक वाले हमें बस लूटने में लगे। इसलिए आप स्किल डेवलप करें, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੇ ਫੰਡਿੰਗ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇ, ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਆਪਕੋ ਲੂਟਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਬੈਠੇ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ।
0: ਹਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਜ਼ਰੀਆ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਇਨਕਮ ਜਾਂ ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਹੈ?
1: ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਨਵਾਂ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈ ਉਸਮੇ ਆਪਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਨਕਮ ਲੈਸ ਦੈਨ $90,000 ਹੈ, ਆਪ PR ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਮੇਂ ਕਹੀਂ ਵੀ ਰਹਤੇ ਹੈ, ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੇ ਹੈ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, फैमिली ऑफ 4 का एस्टिमेट अगर हम लेके चले तो उनको 2 साल के कोर्स में हस्बैंड वाइफ दोनों पढ़ते हैं, फैमिली ऑफ 4 को अप टू $2 लाख की फंडिंग बन जाती है लोन के रूप में
0: जी।
1: उसमें से 40,000 तो कॉलेज को चला गया।
0: हाँ जी।
1: लोन में से ठीक $160,000 आपके खाते में ट्रेड गवर्नमेंट ने डाल देना है। 8 साल से काम कर रहे हैं, ये वो नहीं, जुआ नहीं है, ये ट्रेडिंग नहीं है, ये आएगा नहीं आएगा, आप ऑफिस आ जाइए, जितने केस देखने देख लीजिए
0: जी।
1: तो 1.5 लाख आपके अकाउंट में आ गए, 1.60 मोरपी साइज, और बाकी अगर आपके बच्चे लाइक छोटे हैं 11 साल से तो उनकी 3200 पर किड की पर ईयर की ग्रांट गवर्नमेंट की है।
0: अच्छा,
1: मतलब हस्बैंड वाइफ पढ़ रहे हैं, बच्चे छोटे 11 साल से तो हस्बैंड वाइफ को ग्रांट मिलेगी। मैं नहीं कह रहा बच्चे पढ़ उनके कॉलेज कोर्स कर रहे, समझे,
0: आराम
1: से कोर्स करें, स्किल डेवलप करें, एडुकेशन लें, फंडिंग हासिल करें।
0: क्या बात है, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਕੀ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਸਰਾਂ ਜੀ?
1: ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਸਮੇ ਲਾਈਕ ਆਸਾਨ ਸੇ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕੇ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈ, ਔਰ ਲਾਈਕ ਫੰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਮੇਂ ਆਤੀ ਹੈ। ਹਮਾਰੀ ਫੀਸ ਕਮ ਹੋਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ 199 ਥੀ, ਪਾਲਿਸੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ 199 ਹੈ, ਦੈਟਸ ਇਟ
0: ਜੀ।
1: ਕੋਈ ਚਲਾਕੀ, ਕੋਈ ਮਿੱਠੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਕੰਮ, ਸਾਫ਼ ਤਰੀਕੇ ਸੇ 8 ਸਾਲ ਸੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਛੋਟ 0 ਕੰਪਲੇਂਟ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਤਾ, ਕਿਉਂ ਪੈਸੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਲੋਕੋ ਨੇ $200 ਨੇ ਮੇਰੇ $200 ਦੇਣੇ, ਅਭੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਨੀ ਹੈ, ਹਮਨੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਲੋਕੋ ਸੇ, ਹਮੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੇ ਕਾ, ਲਾਸਟ ਸਰ ਬੀਜੀ ਹਮ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਸੇ
0: ਜੀ ਜੀ,
1: ਇਸ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁੰਡੀ, ਕੋਈ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿੱਠੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਤਾਤੇ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰੇ ਆਪ ਹਮਾਰਾ, 437-264-3175, 437-264-3175। फंड हमने, हमारी छोटी सी फीस शुरू में नहीं लेते सर, काम होने के बाद लेते हैं। फंडिंग किसके खाते में आ रही है, आपके खाते में, तो आपकी ईमानदारी चेक हो रही है। ऑफिस का एड्रेस है 218 एक्सपोर्ट बुलेवर्ड, हरे टरी डेरी पे, आप ट्यूजडे आ सकते हैं, मंडे को मैंने बोला स्टाफ को, कहता छुट्टी चाहिए, मैंने कहा ले लो भाई इस बार।
0: नहीं ठीक है, ट्यूजडे तो तुसी जरूर तुसी पहुंचो। ते जिहड़े किड्स दी एज तुसी कोई मेंशन कीती है, बच्चियां दी उम्र जे फैमिली दे विच ग्रांट या कुछ किवें किवें तुहानू मिल सकदे, कोई मेंशन कीता बच्चियां दी एज किन्नी होनी चाहीदी है?
1: 11 साल से नीचे।
0: 11 साल से नीचे।
1: अच्छा, अगर आप मान के चलिए किसी के 3 बच्चे हैं तो हाँ। मतलब अगर किसी के 3 बच्चे हैं, ये बड़ा थोड़ा सा ट्रिकी कर रहा, ट्रिकी नहीं है, लाइक फोन पे जब आप एस्टिमेट, हम आप एस्टिमेट देंगे फोन पे
0: सिंपल तरीके से। हाँ, जी
1: सिंपल तरीके में आपको समझा देता हूँ। आपकी मतलब मान के चले आपकी फीस है कॉलेज की 10,000 एक साल की
0: जी,
1: तो अगर आपके 3 बच्चे हैं
0: जी
1: तो आपकी $3200 पर किड ग्रांट आ रही है, तो मतलब आपकी फीस तो निकली गई बाहर बाहर।
0: अच्छा, $3200 पर किड पर ईयर,
1: बिल्कुल सही बोला, यस बिल्कुल सही बोला आपने।
0: जी जी जी,
1: अब फीस निकल गई, अब आया आपको 2 लाख, तो 2 लाख का 2 लाख आपका ही लोन हो गया।
0: हाँ।
1: कॉलेज की फीस में से कटी नहीं, अगर आपके 3 बच्चे हो गए 11 साल से नीचे। अगर 2 बच्चे हुए तो 6400, 10,000 में से 6400 तो ग्रांट नहीं कवर कर लिया ना, बाकी 3,000 2 लाख में से 3,000 माइनस करोगे तो कमी, इट्स नॉट अ बिग डील, राइट?
0: बिल्कुल।
1: 0% पे लोन है, 2.5 साल बाद पेमेंट स्टार्ट होती है। तीसरी बड़ी बात, जब पेमेंट स्टार्ट होती है 2.5 साल बाद, 15 साल में उसे लौटा सकते हैं उस लोन को। चौथी बात, तो पेमेंट स्टार्ट होती है 2.5 साल बाद, शुरू में ब्याज कितना 0, बाद में कितना 2.5% पूरे साल का, तो
0: कुछ भी नहीं है, बिल्कुल
1: कुछ भी नहीं है 2.5%, और बाकी लाइक आप 15 साल में उतारते हैं उसको, कोई चाबी नहीं है,
0: बिल्कुल
1: गवर्नमेंट फंडिंग के लिए बैंक नहीं कर रहा। नंबर नोट कर लें आप हमारा, 4374131375। नंबर अगेन 4374131375। मैसेज छोड़ दे, कॉल कर ले आपको, कल आपको हमारा ऑफिस कल भी लाइक स्टाफ आपको मेरे कांटेक्ट कर लेगा आपको।
0: क्या बात है, बिल्कुल जी, 4374131375 ते तुसी ज्यादा जानकारी ले सकते हो। यूनिक ग्लोबल एडवाइजरी 4374131375। सरां जी बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।
1: थैंक यू जी, बहुत
0: थैंक यू। बिना ना गुजारा है, नंबर अगला आ रहा है, नहीं बनी नहीं टाइम, चलो कोई ना। 418 जी, सत श्री अकाल।
2: सत श्री अकाल जी, छोटे वीर की हाल है?
0: बहुत वधिया सर, तुहाडी वड्डे वीर दी कॉल आ गई, होर भी वधिया।
2: बस वधिया, ते ओ ऐ है भी मतलब बंदे नु याद रखना चाहिए अपना करंट, मतलब
0: हां जी
2: वर्तमान
0: जी,
2: भी हुण की कर रहे हां, भी ना तां बड़ा फ्यूचर नु सोच के ते ना बड़ा पास्ट दी चिंता
0: जी,
2: मन खराब करना चाहिए।
0: ता ही अंग्रेजी विच कहंदे आ प्रेजेंट,
2: बस प्रेजेंट ओही, मैं पंजाबी च कहता चलो
0: ओ प्रेजेंट ओही, गिफ्ट भी हो जांदा ना प्रेजेंट, दो मतलब हो जांदे प्रेजेंट दे।
2: बहुत वधिया गलबात करदे हो तुसी, ते सोहना लगदा है, ते सारा मतलब खिड़ जांदा है थोड़ा जिहा, सारा सुनिए है 2.5 मिनट का।
0: अच्छा,
2: हां जी, ओदे च सानू ए दसूगा प्रेजेंट आला भी ओ किवें हुंदा है।
0: अच्छा जी,
2: निक्के निक्के भाइयां दा प्यार किन्ना हुंदा, धर्मप्रीत
0: किन्ना दा जी, ए
2: धर्मप्रीत दा जी,
0: धर्मप्रीत दा।
2: हां जी, ते नाल तुसी सुनोगे ओदा म्यूजिक किन्ना सोहना, निक्के निक्के भाइयां दा प्यार किन्ना हुंदा, धर्मप्रीत।
0: ला देने आ जी, जरूर ला देने आ सर,
2: बहुत धन्यवाद जी।
0: क्या बात है, बहुत शुक्रिया सर,
2: लगदा बहुत, नहीं नहीं वधिया, सानू वधिया थोड़ियां गल्लां बातां सारा सुन रहे आ सी।
0: क्या बात है, थैंक यू बीरा जी, मैं इत्थे आ जुड़ के माइक दे अगे तुहानू बेशक देख नहीं रहा होना, पर बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।
2: नहीं ओ एदा पता कि माइक आ गल सुन के बंदे ना चेहरा मेरा तां फिल्म जी बन जांदी है पूरे।
0: अच्छा, हां बस ते फिल्म बनाण नू बैठे आ जी, दिखदा तां है नहीं बंदा, फिल्म ते जहन दे विच बन सकदी है, अपने जहन
2: नहीं, मैं उही कह रहा वी एदा दा बंदा बोल रहा इस तरह गल कर रहा आ फिल्म बन जांदी।
0: हां बिल्कुल बिल्कुल। तुहाडा नाम भाई जी?
2: सुखविंदर ढींसा।
0: ढींसा साहब बहुत शुक्रिया सुखविंदर जी, बहुत शुक्रिया,
2: काफी पहला तुहाडे नाल गल करदा है आपां,
0: तुसी बड़े टाइम बाद गल होई है, पर तुसी अपने पूरे मतलब तुहाडा ही प्रोग्राम है जी।
2: नहीं नहीं कोई गल नहीं, लै वधिया सा पता आ ला दियो, जरूर
0: जरूर ला देने सर,
2: लब्बो
0: जरूर ला देने, लब लिया आपां ऑनलाइन अप करता,
2: ओरिजिनल लब्बियो पर।
0: अच्छा ठीक है,
2: हां ओ मिक्स जाना लग जे,
0: ठीक है आपां जरूर लब के ओरिजिनल ते ला देने। थैंक यू सर,
2: ठीक है छोटे वीर,
0: थैंक यू थैंक यू, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तां बिल्कुल जी, टॉपिक अज दा, विषय अज दा बड़ा शानदार, बड़ा सौखा, सिंपल ईजी, ते ही है जीवन दे विच इंसान नू एक गल केड़ी याद रखनी चाहीदी है, सदा याद रखनी चाहीदी है, 905-673-3337 ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਹੈ, ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਮੂਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਰਡ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਚੱਕਰ ਬੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਚੱਕਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਚੱਕਰਾਂ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਉਲਝਾਈਏ, ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੀਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਏ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਏ, ਆਹਾ ਆੜ ਦੋ ਜੀ।

0: क्या बात है, बड़ा शानदार गीत यार, मजा आ गया सुन के। ते मैं लाइन सुन रहा सी विच, ते कहंदे है मोरां वर्गी तोरां तुरदी हिरनी वर्गी कुड़िए नी। ते मैं सोच रहा सी मोरां वर्गी तोरां तोर तोर रही है ते हिरनी वर्गी, ते दिमाग दे विच कन्फ्यूजन बड़ी हो गई भी यार पता नहीं केड़े हिसाब की किदां दी कुड़ी की गल कर रहा। पर बड़ा शानदार गीत संगीत। अगले कॉल के बाद चलते हैं जी। इंडिया दे विच ना पहला फोन बड़ा चलिया सी एक नोकिया का 3310, ते भी नंबर नंबर बस मिलता जुलता ही है 3308 जी। सत श्री अकाल।
1: सत श्री अकाल जी,
0: की हाल चाल है जी?
1: बस बस जी ठीक ठाक है। तुहाडा बहुत अच्छा प्रोग्राम हुंदा, बहुत इंजॉय करदा। और मैं बस कहना चाहूंगा कि चिंता सानू नहीं करनी चाहिदी लाइफ दे अंदर
0: जी,
1: क्योंकि असी सारे नाल ज्यादा अगर खुश नसीब अपने आप नू कोई समझे तो अपने आप नू समझे, ओदा एहसास ओनू तां होएगा जदों अपने तो दुखी इंसान वल देखेगा
0: जी जी जी।
1: और सेकंड है कि जेड़ा भी कम करो बड़े ध्यान नाल, बड़ी नम्रता नाल, बड़ी सोच, बड़े सीरियसली करो। जिवें एक छोटा जिहा कार भी अगर तुसी ड्राइव कर रहे हो बड़े सीरियसली चलाओ, अननेसेसरली अपने नू प्रॉब्लम विच ना पाओ।
0: बिल्कुल,
1: थैंक यू वेरी मच।
0: क्या बात है, बहुत शुक्रिया जी। चिंता करनी क्यों, ते कहंदे मत कर चिंत, चिंता है करते। ते जदों रब ने चिंता साडी करनी है सानू कोई लोड़ नहीं चिंता करन दी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। बड़ी सोहनी गल करके गए। कोई भी काम करो रिस्पोंसिबिलिटी दे नाल, सिंसेयरिटी दे नाल बंदा काम नू नबेड़े। जे किते आपां किते कोई काम फड़ लिया, कोई ठेके ते काम फड़ लिया, पहली गल टाइम जे वध कहना कह दो, ये कोई चक्कर नहीं भी यार किते बंदा कहे कि ज़्यादा टाइम लै रहे हैं, कह दो। पर ए नहीं भी जिहड़ा टाइम जिहड़ा कहता उस तो बाद काम लमकाई जाइए यार, फिर वो गल नहीं बनती, क्योंकि रैफरेंस सानू फिर उहदे कोल मिलदियां ने अगे। ते काम आपां भावें दो दिन वध कह लईए पर नबेड़िए टाइम ते ही, क्योंकि हर एक बंदे दी कमिटमेंट कुछ ना कुछ हुंदी है। तुसी भी जे कोई काम कर रहे हो, तुसी भी ये काम नबेड़ के अगला काम ताई फड़ोगे, ताई कहोगे भी यार चेक करो जाके कितना वधिया काम किया। बस निक्कियां निक्कियां गल्लां रिस्पोंसिबिलिटी दे नाल आपां कोई भी काम कर रहे हैं, भावें निक्के तो निक्का ते वड्डे तो वड्डा, जिम्मेवारी साडी पूरी बनदी है।

0: क्या बात है जी, बड़ा शानदार गीत है। दिल यही सी भी सुनते रहिए, बड़ा सोहना गीत तुसीं सुन के हटे हो। तो प्रोग्राम सर्व रेडियो तुहाडे होस्ट सर्वजीत सिंह दे नाल।
1: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुंचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 647-702-2023-647-702-2023।
2: लाइसेंस नंबर 10394।
0: तो बिल्कुल जी, नाल दी नाल लेडीज खास करके अजकल व्याह शादी के मौके के उत्ते तुसी लभ रहे हो डिजाइनर वेयर, कोई सूट लहंगे प्लाजो पजामी लोंग ड्रेसिस तुसी लेनी है तो बड़ी शानदार वरायटी तुहानू मिलेगी सुख डिजाइनर बुटीक तो। तुसी इन्हां दा टिकटॉक हैंडल चैक करो पहला sukh.designer.boutique ते देखो उत्ते किन्ने शानदार तुहानू डिजाइनर वेयर कपड़े मिलणगे। ते ज़्यादा जानकारी लिए तुसी कॉल भी कर सकते हो सुख डिजाइनर ब्यूटीक ते, ते नंबर है 647-203-3365 647-203-3365 647-203-3365 ते संपर्क किया जा सकता है सुख डिजाइनर ब्यूटीक ते।
3: चावला नू जिना तो
0: ते किसी ने भी अपने बिजनेस नू प्रमोट करवाना चाह रहे हो वीकेंड ते, खास करके शनिवार दी शाम 9 to 10 सर्व रेडियो ते, ते तुसी जरूर साडे नाल राबता कर सकते हो। असी तुहाडी हैल्प कर सकते हैं तुहाडे बिजनेस नू प्रमोट करन दे विच, बड़े रीजनेबल ते अफोर्डेबल पैकेजिस तुहानू मिलणगे सर्व रेडियो ते। ते संपर्क नंबर है 647-770-6454 647-770-6454-647-770-6454 ते साडा सोशल मीडिया अकाउंट SARB 4 अक्षर SARB रेडियो, सर्व रेडियो नूं तुसी लाइक फॉलो ते सबसक्राइब जरूर करो। ते उम्मीद है हमेशा वांग तुसी अज दा प्रोग्राम भी जरूर पसंद किया। ते जिंदगी दे विच कहिंदे आ गल्लां याद रखण वालियां बहुत ने, जदों बंदा कम कर रिहा ना ते जदों बंदे दे नाल कोई गलत हो जाए धोखा हो जाए ते कहिंदे आ हमेशा एक चीज़ जरूर याद रखो कि कोई तुहाडे हाथ चो खो के तां खा सकदा है पर तुहाडे नसीब चो नहीं। ये गल हमेशा याद रखियो, तुहाडे कोई हाथ विचो खो के खा सकदा पर तुहाडे नसीब विचो नहीं। ते जरूर अपने आप दे विच तुसी एक मोटिवेशन रखो भी कोई चक्कर नहीं, जे कोई गल हो गई है ते ये साडे लई एक लैसन सी, असी लैसन सीख लिया ते हुण जिंदगी दे विच अग्गे वधीए। जिवें कि साडे कॉलर बाई जी ने भी गल कीती सी वी तुसीं जिंदगी दे विच पिछे ना देखो वी हाँ यार ओ हो गया माड़ा या अग्गे पता नहीं की होना, एवें परेशान रही जाइए। ते यही साडा जिहड़ा इस टाइम प्रेजेंट मूवमेंट है, आ टाइम है, इत्थे तुसीं की कर रहे हो ये तुहाडियां कल नूं एक शानदार मैमरीज़ सोहणियां मिठियां यादां जरूर बनणगियां। ते जरूर इदां ही हसदे रहो, मुस्कुराते रहो, खेडते रहो ते खेडते रहो अपने वड्डे वडेरियां नाल, पोतियां नाल, पोतियां नाल, इदां ही इंजॉय करते रहो। ते अज दा प्रोग्राम समाप्ति दे वाल है ते बाई जी ने कहा सी गीत जरूर लाया जे, जे इस तों बाद लिरे कीता फिर गाणा पूरा नहीं होना। धर्मप्रीत दा इह गीत गाया होया निक्के निक्के भाइयां दे, ते आओ फिर इस गीत नूं इंजॉय करदे आं। ते मैं अज दे प्रोग्राम च इत्थी लैना इजाजत, तुसीं अपना रखो ख्याल ते साडे वल्लों हथ जोड़ के प्यार भरी सत श्री अकाल।

0: सरणी उभरे कागज हर जिन दया नाम आधारे ताप उतारे सतगुरु पूरे की कृपा का रहा सदा आनंद करो मेरे प्यारे हर गोविंद गुर राखिया वड्डी वड्याई नानक करती साच पद सत पाखिया सूरत महला वे कृपा स्वामी मेरे तित सच है दरबार सतगुरु का
1: सनग्लासेस सेफ्टी ग्लासेस तो विजिट कीजिए अल्फा ऑप्टिकल चिंकोजी एंड विलियम्स पार्कवे में मौजूद गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी स्टेज जी हाँ उनकी स्पेशल्स देखने के लिए अल्फा ऑप्टिकल डॉट सी ए पे जाइए आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-400-5 पर कॉल कीजिए 9054562733 अल्फा ऑप्टिकल योर विजन इज योर बिजनेस
0: करण कारण समर्थ सो पाई सच्चे सच्ची सोए नानक प्रभु त्याई है पाई मन तन शीतल होए मूरख मल्ला पंचमा संत हो हर हर नाम त्याई सुख सागर प्रभु विसरो नाही मन चिंदियाना फल पाई रहाओ सतगुर पूरा ताप गवाया अपनी कृपा धारी पात्र हम

0: नानक पत राखन मिसर दरिया सब संसारो और अल्लाह परवा मेरा सतगुरु रखवाला होआ तार कृपा प्रभु हाथ दे राख्या हर गोविंद नवा निरोआ रहाओ ताप गया प्रभु आप मिटाया जन की लाज रखाई साथ संगत ते सब बल पाए सतगुरु के बल जाई हलत पलत कब रोवे सवारे हमरा गुण अब गुण ना बिचारिया अटना
1: गल कर लगे दिल का तहता ही का सिद्ध करन लगे जरा सुन के सोने हो।

गुर सतगुर पूरे सुख उपजे बाजे अनहद तूरे रहाओ ताप पाप संताप मिनासे हर सिमरत किल बिक सबना से अनहद करहो मिल।

आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यार का स्वागत है, अभिनंदन है। नमस्कार, और आपके लिए बहुत ही प्यारा सा मौसम है, लॉन्ग वीकेंड है। अभी आप जानते हो कि आपके लिए अभी अगस्त का महीना गया है, तो अभी साल ऐसे हाथ से कैसे सरकता जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपने तो बहुत सारी अचीवमेंट कर ली है। अभी तो कुछ महीने, 4-5 महीने बाकी है, फिर भी आपने बहुत सारी अपनी जो योजनाएं थी उनको पूरा कर लिया है और आपने उनको पूरा फुलफिल कर लिया है। ये आप पूरी तरह से समझते हो, जानते हो और आप आगे भी बढ़ रहे हो, जो कि एक बहुत ही बढ़िया चीज है कि आप अपने वक्त को, अपने टाइम को अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हो और उसको बढ़िया तरीके से अपने वक्त को आप आगे आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। ये जिंदगी में सबसे आपके लिए बहुत बड़ी बात है। तो लॉन्ग वीकेंड है, प्लीज डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। एंड सभी शहरों में बहुत सारी इवेंट्स हो रही है सिविक हॉलीडे की। फायरवर्क्स तो होगा ही होगा ना, ये तो आपको मालूम ही है कि फायरवर्क्स होने वाला है। तो आप जहाँ भी जा रहे हो अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारों के साथ, तो आप बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिएगा और जिंदगी का लुत्फ उठाइएगा। जैसे भी आपको अच्छा लगता है, जैसे भी आपका मन चाहे, तो उसी तरीके से आप एंजॉय कीजिएगा अपना वक्त जो है ना। अगर आप अपनी मर्जी से जीते हो, अपने टर्म्स में जीते हो, उसका जो जीने का मजा है ना, वो अलग ही है। और उसमें आपको ये महसूस हो जाता है कि आपने टाइम की वैल्यू की, दूसरों के टाइम की वैल्यू की और आप जिंदगी को एक बढ़िया तरीके से जिए हो, एक प्रैक्टिकल तरीके से जिए हो और आगे बढ़ने के लिए जिए हो और दूसरों को भी अपने साथ आगे लेके चले हो। दूसरों को साथ लेके आगे चलता है कोई कोई, अपने लिए तो सब भागते हैं। जो दूसरों को साथ लेके चलता है उसको उसकी अपना ही अलग ही, उनको ही मालूम है जो ऐसा करते हैं और उनको ही मालूम है कि उसका क्या मजा है। तो आइए इन्हीं विचारों को साथ लेकर के हम आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर बढ़िया क्वालिटी का लेके आना चाहते हो और आपको बढ़िया टीवी चाहिए, बढ़िया लेटेस्ट गैजेट चाहिए किचन के लिए, तो आपको आउटडोर फर्नीचर चाहिए और दूर आपको आपके लिए बारबेक्यू चाहिए, तो ये सारा ही सामान आपको कहाँ पे मिलता है? जी हाँ, आपको ये सारा सामान आपको मिलता है। जी हाँ, तो ये जो जगह है आपके लिए, ये है आपके लिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है और दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल पे है। और उनकी स्पेशल देखने के लिए अभी राखी आने वाली है हमारी बहनों के लिए, तो अगर आपने किसी तरह की भी राखी की, किसी तरह की भी आपको सामान लेना है तो पूजा हट में, तो अब टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे अगर आप अपनी बहन को टीवी लेके देना चाहते हो, गिफ्ट लेके देना चाहते हो, तो आप जाइएगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है। तो और जानकारी के लिए आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाइए, फिर आप कॉल कर सकते हैं अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045-799-0045 पे आप उनको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक को कॉल कर सकते हो। अब जब आपने घर लेना है तो आप जाइएगा, आप कॉल कीजिएगा नसीब खेंड को 519-500-46-1260 किचनर वाटरलू गॉल्फ में। अगर आपने कोई घर खरीदना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप जाइएगा, आप कॉल कीजिएगा नसीब खेंड को। जी हाँ, नसीब खेंड आपको
बहुत बढ़िया डील लेके देंगे। और जानकारी के लिए 519-546-1260 अब आपने घर ले लिया, आपको मूव तो होना ही है, तो एचके मूवर्स आपकी पूरे कनाडा भर में मदद करने की कोशिश मदद करते हैं, कनाडा भर में आपको मूव होने के लिए मदद करते हैं। तो ये है आपके लिए एचके मूवर्स। एचके मूवर्स की बहुत सारी टीम्स हैं, आपके सामान को हिफाजत से पहुंचाते हैं। तो आज ही अपना ट्रक बुक कर लो तो आप 416-524-604 पर आप एचके मूवर्स को कॉल कर सकते हो। अगर आपने फूड ऑर्डर करना है, लाइव कुकिंग करवानी है तो आप न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट ब्रिटानिया क्रेडिट व्यू पे मौजूद है और न्यूली रेनोवेटेड है, आप उनको कॉल कीजिएगा 905-814-1703। ये है आपके लिए न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, आपके लिए मौजूद है मिसिसागा में ब्रिटानिया एंड क्रेडिट व्यू पे। तो अब आपके लिए गाना तो एक बढ़िया सा बनता ही है ना, तो जरूर गाना सुनाएंगे। पर आपको बता दें कि अगर आप लंदन आसपास के इलाके में रहते हैं, आपको कलिजन का काम करवाना है तो आपके लिए मास्टर कलिजन डिपो लंदन में मौजूद है गोर रोड पे, तो आप उनको कॉल कीजिएगा और जानकारी के लिए, और कलिजन का काम बहुत बढ़िया करके देंगे। तो ये है आपके लिए मास्टर कलिजन डिपो, तो आप masterclusiondepot.com पर जाकर उनके बारे में और जानकारियां ले सकते हो। तो आइए अब आपको एक बढ़िया सा गीत सुनाते हैं लता जी का। लता जी तो हमेशा के लिए forever है, तो let's go to this beautiful लता जी song। पंजाबी के गाने भी उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाए हैं, आपको उनका पंजाबी का गीत भी जरूर तो वो भी आपको जरूर सुनाएंगे, पर पहले आपको ये बहुत ही रोमांटिक सा गाना

हाँ जी, आप सुन रहे हो प्रोग्राम इंस्ट्रूमेंटल है, पर आई जस्ट वांट टू हैव थोड़ा सा आवाज होनी चाहिए, तो आइए आपको ये रोमांटिक सा गीत सुनाती हूँ। लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। अभी आप वीकेंड में कोई इंटरेस्टिंग चीज आप कर रहे हो बताना, जिनके बर्थडेज हैं, बहुत शादियां बहुत होती हैं इस वीकेंड में, तो अगर आपके शादी हो रही है तो आपको बहुत बहुत बधाई।

जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है झारखंड सर में। उम्मीद रखती हूँ कि आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। प्रोग्राम तक और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा शर्मा। तो चलो अभी आपको एक और बढ़िया सा गीत सुनाती हूँ। मेरे सामने आ गया तो मैंने सोचा कि आपके साथ जरूर शेयर करना चाहिए। तो ये जो एक दूसरे का होने की बात होती है, इसी में बस गाने में यही बताया गया है। बड़ा रोमांटिक सा है। लेट्स हियर। वीकेंड है, लॉन्ग वीकेंड है तो सुनते हैं।

या एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में, और मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट मीरा शर्मा। तो अब अगर आपने किसी किस्म का भी फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर, लोटस टीवी आपको चाहिए, या फिर आपको आउटडोर फर्नीचर, बारबेक्यू चाहिए, किचन गैजेट्स चाहिए, तो ये सारा सामान आपको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलता है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी गोल्फ में है। topchoiceelectronics.com पर जाकर आप उनकी राखी स्पेशल देख सकते हो। फिर आपने अगर ऑर्डर बुक करना हो तो आप 905-799-0045 पर कॉल कीजिए, 905-799-0045 पे आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को कॉल कर सकते हो। तो अब अगर आपने मूव होना है तो आपके लिए मूविंग की पूरी सेवाएं आपको एचके मूवर्स देते हैं कनाडा भर में। तो उनकी बहुत सारी टीम्स हैं आपके सामान को हाजिर से पहुंचाते हैं। आज ही अपना ट्रक बुक कर लीजिए 416-524-4164-624-6704 पे आप एचके मूवर्स को कॉल कर सकते हैं। अगर आप लंदन आसपास के इलाके में रहते हैं, आपके लिए बड़ी खुशी की खबर है कि आपके लिए मास्टर कोलिजन डिपो लंदन में मौजूद है अब, और बहुत सालों का उनका तजर्बा है। आपका कोलिजन आपकी कार वैन ट्रक को नए जैसा बना देंगे। आप मास्टर कोलिजन डिपो .com पर जाकर उनके बारे में और जानकारी ले लीजिए। अब अगर आपने किसी किस्म का भी आपको मूविंग करनी है तो आप एचके मूवर 416-524-4704 पर कॉल कर सकते हो। और लड्डू, जलेबियाँ, समोसे, मिठाइयाँ चाहिए तो समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री पे जाइएगा आपको। और राखियाँ लेनी है आपको इंडिया सजावटन पूजा हाट पे जाइएगा। तो लीजिए, सुनिए ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

0: आत्मा की आवाज के बारे में जब बात की जाए तो हम लोग ज्यादातर अपनी आत्मा की आवाज को सुनते नहीं। अगर हम अपनी आत्मा की आवाज को सुनना शुरू कर दें तो शायद हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है, क्योंकि वो आपकी अंतरात्मा की जो आवाज होती है, वही अंदर जो आपके भगवान बैठा है उसी की आवाज होती है वो। तो अगर तो आप अपने आप को जानते हो, समझते हो, तो फिर आप दुनिया को भी जान सकते हो, समझ सकते हो। तो ये बड़ी गहरी बात है, आप समझने की कोशिश करना कि अगर आप खुद को समझ लो, खुद को जान लो, सेल्फ इल्यूमिनेशन, तो उसमें बहुत ही मज़ा है। आप ट्राई करके देखिए, कोशिश करके देखिए। तो आइए, इस गीत के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने श्रद्धा पला है, वंडरफुल डे। और रात को हम आपकी सेवा में 10 से 11 बजे शुरू हो जाएंगे और आपको बहुत बढ़िया बढ़िया गीत सुनाएंगे, मनोरंजन करेंगे, आपसे बातें करेंगे, बहुत प्यारी प्यारी सी बातें करेंगे। तो मैंने एक पोईम लिखनी शुरू की है, तो अभी मैंने पहली 2 लाइनें लिखी हैं, तो आपको ये साथ शेयर कर लेती हूँ। बाकी पोईम अभी मुझे लिखनी है, मैं पोईम लिखती हूँ। तो मैंने जो पहली 2 लाइनें लिखी हैं कि आई लाइक टू डांस व्हेन आई गेट ए चांस, आई डांस विद वूल्स, लायंस, lionesses and of course pigs. Yes, pigs. I dance with pigs.
1: ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਇਲਟ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ
2: ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਸਿਰਫ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਹੀ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਉਹ ESA ਪਰਮਿਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ higherlicensed.ca ਤੇ ਜਾਓ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸੇਫਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ।

0: रहा हो, ताप गया प्रभ आप मिटाया, जन की लाज रखाई, साथ संगत ते सब पल पाए, सतगुर के बल जाई, हलत पलत कब रोवे सवारे, हमरा गुण अब गुण ना बिचारिया। अटना
1: गल कर लगे, दिल कर रहे हैं, ताही का सिद्ध कर लगे हैं, तो सुन के सोने

कथा गणेश स्तोत्रम। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन्नित्यं आ

किं पातु नभो मणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सक्तिनी ऊरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे मे पातु मार्ताण्डो गुल्फौ पातु दिशां पतिः पादौ पातु दिनमणिः पातु मित्रोऽखिलं वपुः आदित्यकवचं पुण्यम् अभेद्य वज्रसन्निभम् सर्वरोगभयादिभ्यो उच्यते नात्र संशयः।

श्री दुर्गा सप्त श्लोकी स्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषिः अनन्तं छन्दः श्री महाकाली महालक्ष्मी देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम्।

0: का मज्जा मारो द्वापर फिटिंग स्टोर।
1: यहाँ से आपको थाका चुन्नी मेहंदी जाकर मिलनी और मारा

समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारी आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड तो आते इन्ने साला दे परोसे अते विश्वास कारण कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 4% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स उन 3 लोकेशंस तो सर्व करते ने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 अर्जुन रोड ईटोबीको वधेरे जानकारी लिए कॉल करो 416-213-1150 416-213-1165

आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यार का स्वागत है, अभिनंदन है और आपके लिए बहुत ही प्यारा सा मौसम है, लॉन्ग वीकेंड है। अभी आप जानते हो कि आपके लिए अभी अगस्त का महीना गया है, तो अभी साल ऐसे हाथ से कैसे सरकता जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपने तो बहुत सारी अचीवमेंट कर ली है, अभी तो कुछ महीने चार पांच महीने बाकी है, फिर भी आपने बहुत सारी अपनी जो योजनाएं थी उनको पूरा कर लिया है और आपने उनको पूरा फुलफिल कर लिया है। ये आप पूरी तरह से समझते हो, जानते हो और आप आगे भी बढ़ रहे हो, जो कि एक बहुत ही बढ़िया चीज है कि आप अपने वक्त को, अपने टाइम को अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हो और उसको बढ़िया तरीके से अपने वक्त को आप आगे आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। ये जिंदगी में सबसे आपके लिए बहुत बड़ी बात है। तो लॉन्ग वीकेंड है, प्लीज डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। एंड सभी शहरों में बहुत सारी इवेंट्स हो रही है, सिविक हॉलीडे की फायरवर्क्स तो होगा ही होगा ना, ये तो आपको मालूम ही है कि फायरवर्क्स होने वाला है। तो आप जहाँ भी जा रहे हो अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारों के साथ, तो आप बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिएगा और ज़िंदगी का लुत्फ उठाइएगा। जैसे भी आपको अच्छा लगता है, जैसे भी आपका मन चाहे, तो उसी तरीके से आप तो इंजॉय कीजिएगा अपना वक्त जो है ना। अगर आप अपनी मर्जी से जीते हो, अपने टर्म्स में जीते हो, उसका जो जीने का मज़ा है ना वो अलग ही है और उसमें आपको ये महसूस हो जाता है कि आपने टाइम की वैल्यू की, दूसरों के टाइम की वैल्यू की और आप ज़िंदगी को एक बढ़िया तरीके से जिए हो, एक प्रैक्टिकल तरीके से जिए हो और आगे बढ़ने के लिए जिए हो और दूसरों को भी अपने साथ आगे लेके चले हो। दूसरों को साथ लेके आगे चलता है कोई कोई, अपने लिए तो सब भागते हैं, जो दूसरों को साथ लेके चलता है उसको उसको उसकी अपना ही अलग ही, उनको ही मालूम है जो ऐसा करते हैं और उनको ही मालूम है कि उसका क्या मज़ा है। तो आइए इन्हीं विचारों को साथ लेकर के हम आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर बढ़िया क्वालिटी का लेके आना चाहते हो और आपको बढ़िया टीवी चाहिए, बढ़िया लेटेस्ट गैजेट चाहिए किचन के लिए, तो आपको आउटडोर फर्नीचर चाहिए, आउटडोर आपको आपके लिए बारबेक्यू चाहिए, तो ये सारा ही सामान आपको कहाँ पे मिलता है? जी हाँ, आपको ये सारा सामान आपको मिलता है, जी हाँ। तो ये जो जगह है आपके लिए, ये है आपके लिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है और दूसरी लोकेशन उनकी ग्वालियर में है और उनकी स्पेशल देखने के लिए अभी राखी आने वाली है हमारी बहनों के लिए। तो अगर आपने किसी तरह की भी राखी की, किसी तरह की भी आपको सामान लेना है तो पूजा हट में, तो अब टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे अगर आप अपनी बहन को टीवी लेके देना चाहते हो, गिफ्ट लेके देना चाहते हो, तो आप जाइएगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल में है। तो और जानकारी के लिए आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाइए और फिर आप कॉल कर सकते हैं अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पे आप उनको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक को कॉल कर सकते हो। अब जब आपने घर लेना है तो आप जाइएगा, आप कॉल कीजिएगा नसीब खंड को 519-500-1260 किचनर वाटरलू गॉल्फ में। अगर आपने कोई घर खरीदना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप जाइएगा, आप कॉल कीजिएगा नसीब खंड को। जी हाँ, नसीब खंड आपको
बहुत बढ़िया डील लेके देंगे। और जानकारी के लिए 519-542-1260 आप आपने घर ले लिया, आपको मूव तो होना ही है, तो HK मूवर्स आपकी पूरे कनाडा भर में मदद करने की कोशिश मदद करते हैं, कनाडा भर में आपको मूव होने के लिए मदद करते हैं। तो ये है आपके लिए HK मूवर्स। HK मूवर्स की बहुत सारी टीम्स हैं आपके सामान को हिफाजत से पहुंचाते हैं, तो आज ही अपना ट्रक बुक कर लो तो आप 416-524-604 पर आप HK मूवर्स को कॉल कर सकते हो। अगर आपने फूड ऑर्डर करना है, लाइव कुकिंग करवानी है तो आप न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट ब्रिटानिया क्रेडिट व्यू पे मौजूद है और न्यूली रेनोवेटेड है, आप उनको कॉल कीजिएगा 905-814-1703। ये है आपके लिए न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट आपके लिए मौजूद है मिसिसागा में ब्रिटानिया एंड क्रेडिट व्यू पे। तो अब आपके लिए गाना तो एक बढ़िया सा बनता ही है ना, तो जरूर गाना सुनाएंगे। पर आपको बता दें कि अगर आपने आप लंदन आसपास के इलाके में रहते हैं, आपको क्लीजन का काम करवाना है तो आपके लिए मास्टर क्लीजन डिपो लंदन में मौजूद है गोल रोड पे, तो आप उनको कॉल कीजिएगा और जानकारी के लिए, और क्लीजन का काम बहुत बढ़िया करके देंगे। तो ये है आपके लिए मास्टर क्लीजन डिपो, तो आप masterclusiondepot.com पर जाकर उनके बारे में और जानकारियाँ ले सकते हो। तो आइए अब आपको एक बढ़िया सा गीत सुनाते हैं लता जी का। लता जी तो हमेशा के लिए फॉर एवर है, तो लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल लता जी सॉन्ग। पंजाबी के गाने भी उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाए हैं, आपको उनका पंजाबी का गीत भी जरूर तो वो भी आपको जरूर सुनाएंगे, पर पहले आपको ये बहुत ही रोमांटिक सा गाना

हाँ जी, आप सुन रहे हो प्रोग्राम इंस्ट्रूमेंटल है, पर आई जस्ट वांट टू हैव थोड़ा सा आवाज होनी चाहिए, तो आइए आपको ये रोमांटिक सा गीत सुनाती हूँ। लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। अभी आप वीकेंड में कोई इंटरेस्टिंग चीज आप कर रहे हो बताना, जिनके बर्थडेज हैं, बहुत शादियां बहुत होती हैं इस वीकेंड में, तो अगर आपके शादी हो रही है तो आपको बहुत बहुत बधाई।

जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है झारखंड साहब में। उम्मीद रखती हूँ कि आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा प्रोग्राम घंटा, और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा शर्मा। तो चलो अभी आपको एक और बढ़िया सा गीत सुनाती हूँ, मेरे सामने आ गया तो मैंने सोचा कि आपके साथ जरूर शेयर करना चाहिए। तो ये जो एक दूसरे का होने की बात होती है, इसी में बस गाने में यही बताया गया है, बड़ा रोमांटिक सा है। वीकेंड है, लॉन्ग वीकेंड है तो सुनते हैं अच्छे अच्छे गाने।

या एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में, और मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट मीरा शर्मा। तो अब अगर आपने किसी किस्म का भी फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर, लोटस टीवी आपको चाहिए, या फिर आपको आउटडोर फर्नीचर, बारबेक्यू चाहिए, किचन गैजेट्स चाहिए, तो ये सारा सामान आपको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलता है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है। दूसरी लोकेशन उनकी गोल्फ में है। topchoiceelectronics.com पर जाकर आप उनकी राखी स्पेशल देख सकते हो। फिर आपने अगर ऑर्डर बुक करना हो तो आप 905-799-0045 पर कॉल कीजिए। 905-799-0045 पे आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को कॉल कर सकते हो। तो अब अगर आपने मूव होना है तो आपके लिए मूविंग की पूरी सेवाएं आपको एचके मूवर्स देते हैं कनाडा भर में। तो उनकी बहुत सारी टीम्स हैं आपके सामान को हाजिर से पहुंचाते हैं। आज ही अपना ट्रक बुक कर लीजिए 416-524-4164-6704 पे आप एचके मूवर्स को कॉल कर सकते हैं। अगर आप लंदन आसपास के इलाके में रहते हैं, आपके लिए बड़ी खुशी की खबर है कि आपके लिए मास्टर कोलिजन जो लंदन में मौजूद है अब, और बहुत सालों का उनका तजर्बा है। आपका कोलिजन आपकी कार वैन ट्रक को नए जैसा बना देंगे। आप मास्टर कोलिजन depot.com पर जाकर उनके बारे में और जानकारी ले लीजिए। अब अगर आपने किसी किस्म का भी आपको मूविंग करनी है तो आप एचके मूवर 416-524-6704 पर कॉल कर सकते हो। और लड्डू, जलेबियाँ, समोसे, मिठाइयाँ चाहिए तो समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री पे जाइएगा आपको। और राखियाँ लेनी है आपको इंडिया सजावटन पूजा हाट पे जाइएगा। तो लीजिए, सुनिए ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

0: आत्मा की आवाज के बारे में जब बात की जाए तो हम लोग ज्यादातर अपनी आत्मा की आवाज को सुनते नहीं। अगर हम अपनी आत्मा की आवाज को सुनना शुरू कर दें तो शायद हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है, क्योंकि वो आपकी अंतरात्मा की जो आवाज होती है वही अंदर जो आपके भगवान बैठा है उसी की आवाज होती है वो। तो अगर तो आप अपने आप को जानते हो, समझते हो, तो फिर आप दुनिया को भी जान सकते हो, समझ सकते हो। तो ये बड़ी गहरी बात है, आप समझने की कोशिश करना कि अगर आप खुद को समझ लो, खुद को जान लो, सेल्फ इल्यूमिनेशन, तो उसमें बहुत ही मज़ा है। आप ट्राई करके देखिए, कोशिश करके देखिए। तो आइए इस गीत के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पान स्वर्धा पला है वंडरफुल डे। और रात को हम आपकी सेवा में 10 से 11 बजे शुरू हो जाएंगे और आपको बहुत बढ़िया बढ़िया गीत सुनाएंगे, मनोरंजन करेंगे, आपसे बातें करेंगे, बहुत प्यारी प्यारी सी बातें करेंगे। तो मैंने एक पोईम लिखनी शुरू की है, तो अभी मैंने पहली दो लाइनें लिखी हैं, तो आपको ये साथ शेयर कर लेती हूँ। बाकी पोईम अभी मुझे लिखनी है, मैं पोईम लिखती हूँ। तो मैंने जो पहली दो लाइनें लिखी हैं कि आई लाइक टू डांस व्हेन आई गेट ए चांस, आई डांस विद वूल्व्स, लायंस, lionesses and of course pigs. Yes, pigs. I dance with pigs. And
1: this is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स

हमारी बेदन तू जानता साह, अवर किया जाने कोई। रहाउ साचा साहिब सच तू मेरे साह, तेरा किया सच सब होए। झूठा किस को आखिए साह,

0: सवना की तू आस है मेरे प्यारे, सब तुझ है त्याव है मेरे सहा। ज्यों पावे त्यों रख तू मेरे प्यारे, सच नानक के पातशाह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तनासरी महला चौथा। मेरे साहा मैं हर दर्शन सुख हुए, हमरी बेदन तू जानता साहा, अवर क्या जाने कोए।
1: स्वागत स्वागत जी फिर तो पंजाबी लहर रेडियो प्रोग्राम ते। तुसी AM 530 ते पंजाबी लहरां दे नाल इस वेले बने हुए हो, जुड़े हुए हो, ते बहुत ही प्यारे दिन की शुरुआत असी कर रहे हैं। ठंडियां हवावां, प्यारियां हवावां, प्लेजेंट जिहा मौसम, ते जी मीह दी पूरी अज तैयारी है, ते 21 डिग्री टैंपरेचर दे नाल ते किणियां दे नाल शुरुआत अज दे इस दिन की हो रही है। ते दिन भर जी सवेर वेले खास तौर ते अच्छे मीह दे आसार ने, कह लो कि अज दिन भर ही मीह वाला ही दिन है। सो छुट्टी का जो प्लैन तुसी कीता है अज फिर यह मीह दे विच ही संपूर्ण होना। दिन भर टैंपरेचर जो ने 22 डिग्री तक बने रहने ने। तो जी अज का जो छुट्टी का दिन है, फिर आने वाला जो ये सोमवार की छुट्टी का दिन भी है जी, ये थानू बहुत बहुत जी मुबारक होवे। प्लैनस कई बनाए होंगे ने परिवार के नाल, कई गैट टूगैदरस प्लैन होंदिया ने, कई बार कितने जाना, मौसम जो चंगा है, तो वह सारे प्लैन जी परमात्मा जरूर जो है अज लई थोड़े जो प्लैनस ने वह जरूर पूरा करे जी। तो कल दे मौसम की थोड़ी गलबात करिए। अज चलो मीह दे नाल ही दिन बीतना, पर उम्मीद है कि कल धुप निकलेगी ते 26 डिग्री तक मौसम जो ने अज होणगे। पर अज 22 डिग्री दे नाल जो फिर मीह वाला मौसम है, जो फिर चंगा तलिया खाण वाला मौसम है, पकौड़ियां दा मौसम जी अज ऐतवार दे दिन बिल्कुल बन जांदा। सो हौली हौली जो शुरुआत हो चुकी है, ठीक 6:08 जी सूरज चढ़ चुका।

दूसरा घंटा समा हो गया जी 7:12 का तो समा हो गया है थोड़िया कॉल्स का। तो पहला तो निघा स्वागत है इस भाग के विच। तो तुसी अपनी कॉल कर सकते हो, डायल कर सकते हो नंबर 905-673-3337 905-673-3337 तां जो कि हुण खबरां दे अगले भाग दे विच तुहाडे ही विचार जो ने प्रोग्राम दे विच ले जाण। नंबर 905-673-3337 जी तुसी नोट बिल्कुल रखो जी। तो जी प्यारे दिन की शुरुआत है, सोहना मौसम है, मीह की पूरी तैयारी है। तो जी अज ऐतवार जो मीह दे नाल रंगिया होया है, सो जी थानू बहुत बहुत मुबारक होवे। 22 डिग्री इस वेले दे तापमान ते दिन भर तापमान अजिहे ही रहणगे। सो अज दा प्लेजेंट दिन थानू जी मुबारक, थोड़े परिवार नू मुबारक, ते छुट्टी दी तैयारी तुसी बिल्कुल कस लो। ते एक पॉजिटिव एटीट्यूड दे नाल जी शुरुआत सफर दी करिए, दिन दी करिए, क्योंकि एक परफेक्ट सनराइज वांगू पॉजिटिव एटीट्यूड भी जो पूरे दिन की टोन जो है वह सोहनी सैट कर दिंदा। जदों चलो अज तक खैर बदलवाई वाला मौसम है, जदों सूरज की किरणा दे नाल जदों दिन असी शुरू करते हैं तो किन्नियां मन दे विच चंगियां सोचां जो ने, चंगियां फीलिंग्स जो ने उजागर हुंदियां ने। सो उस तरह यह पॉजिटिविटी अपने मन दे विच असी आप मुहारे भी लैके आ सकते हैं, तो यह भी फिर चंगी टोन जो है वह दिन की जरूर सैट कर दिंदी है, जो सारे दिन लई साडे लई बहुत जरूरी हो जाती है। सो वो टोन जो है अपनी तुसी जरूर सैट करनी जी। तो जी इस दे नाल ही नंबर 905-673-3337 मैं एक बार फिर तो दस देवां तां जो कि सानू तुसी हुणे ही कॉल कर सको, घट वेट करनी पवे ते थोड़ी कॉल जो है जल्द असी लै लईए। ते नाल ही जी मैं हरमन बत्ता जी का संदेश दे देवां जी। गल होवे मॉर्गेज की, गल होवे जो परेशानी सानू आउंदी है जदों असी अपने सुपनिया का घर लैना हुंदा, जदों असी अपना चंगा कोई इन्वेस्टमेंट जो प्रोजेक्ट जो है सोचा हुंदा कि इन्वेस्टमेंट प्लान साडा हुंदा, कोई प्रॉपर्टी लैनी हुंदी है, पर फिर मुश्किल जो मॉर्गेज की आउंदी है तो यह मुश्किल नूं आसान हरमन बत्ता जी अपने तजर्बे दे नाल थोड़े लिए जरूर कर सकते हैं जी। अच्छे मॉर्गेज ऑप्शनस मल्टीपल लेंडर्स तो इन्हां दे नाल ने। सो नंबर 647-685-9000 नंबर है, 6476859000 जी यह नंबर तुसी हरमन बत्ता जी दे लई जरूर नोट कर सकते हो जी। तो प्रोग्राम पंजाबी लहरां दा हवाला तुसी इन्हां नूं जरूर जी इस दे विच देना। सो जी नाल ही थानू मैं यह भी याद करवा देवां जिथे ओंटैरियो स्टूडेंट असिस्टेंटशिप प्रोग्राम दा लोन जो ओ साहब दा लोन है थानू याद होवेगा, अगस्त 1 तो तय होया सी कि इस नूं जो सरकार ने चेंजेस इस दे विच करने तय किए सी, जो घट किया सीगा, सो वह हुण लागू हो चुके ने। तो जो विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लई पूरा डिपेंडेंट ही इस असिस्टेंटशिप प्रोग्राम ते उस ऐप ते हुंदे ने, उन्हां नूं हुण काफ़ी मुश्किल का समा जो है फिलहाल इस वेले बन गया, क्योंकि अज तो पहला प्रोविंस 85% उस ऐप लोन दिंदा सी, पर अगस्त 1 तो यह जो चेंज इन्होंने लागू कर दिता तो हुण सिर्फ 25% ग्रांट जो है वह रह गई है। सो किसी पहला लेट्स से 8000 जो डॉलर मिलते सी ते हुण 1000 डॉलर ही मिलणगे। सो इस दे नाल प्रोविंस ने यह चेंज भी किया कि 7 साल ट्यूशन फीस फ्रीज जो है इनू हटा दिता है, कि कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ जो ने जो चाहते ने अपनी कॉस्ट 2% तक हर साल वधा सकते ने अगले 3 साल तक। सो बच्चियां ते फाइनैंशियल बोझ जो है इस दे नाल हुण काफ़ी जो वध गया है, कई जो नाल काम नहीं कर सकते जिन्हां नूं कई बारी कुछ डिसेबिलिटी है वह पढ़ाई दे नाल काम करन तो हले फिलहाल जो समर्थ नहीं हन उन्हां लई काफ़ी मुश्किल जो है इस दे विच हुण आउण वाले समें दे विच बच्चियां नूं दिखदी है कि हुण पढ़ाई दा खर्चा जो है वह फिर पूरा कित्थे होवेगा। सो यह एक काफ़ी मुश्किल दी घड़ी है उन्हां दे लई। ते जेकर तुसी जी टुटदे तारियां नूं वेख के निक्के हुंदियां तो अपनी कोई विश मंगदे हुंदे सी, सो यह नज़ारा सारियां नूं वैसे चंगा लगदा है जदों एक टुटदा तारा विखदा। तो अगस्त दे विच इत्थे इह खूब वेखण नूं मिलेगा। तो अगस्त 12 तो लैके 13 तक कहिंदे ने कि परसीड मिट्योर शावर जो है वह तुसी वेख सकोगे, जो साल दे विच इन्हां दिनां दे विच काफ़ी पीक ते हुंदा ते काफ़ी वेखण नूं मिलेगा, जिथे खास तौर पर कुछ अजिहा धरती जो है उसका उसकी जो मूवमेंट है

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये राजधानी राजधानी राजधानी
0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, द लार्जेस्ट इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट चेन इन कनाडा। फाइंड आउट मोर एट rajdhanisweets.ca।
2: गार्निशमेंट, पावर ऑफ सेल नोटिस, बैंक वालों पैसे दी मांग, उन्हें ही सानू कॉल करो, फिर तो अनु कोई नहीं कर सकेगा तंग। कर्जा माफ कराओ, 100% मानसिक शांति पाओ, कलेक्शन कॉलों तो छुटकारा, बिना व्याज निकिया निकिया किश्तां। कॉल करो कनाडा कंज्यूमर क्रेडिट असिस्टेंस 416-502-3100। कर्जे तो परेशान, असी करांगे कम आसान। 416-502-3100।
3: इमेजिन करो कि तुसी एक घर खरीदना चाहते हो, सोना जिया क्यूट जिया घर, वधिया लोकेशन एंड इन बजट। यू देन कॉल योर फ्रेंड्स, देन दे कॉल देयर फ्रेंड्स एंड दे कॉल यू बैक सेइंग लब दंगे वरी ना कर। तुसी थोड़ा जा वरी कर दियो, समझ नहीं आ रहा हुंदा की करिए किवें करिए, देन सडनली तुसी एक कमर्शियल सुन दे।
4: दिस इज हरजिंदर गिल फ्रॉम रीमैक्स गोल्ड रियल्टी। यू गॉट इट राइट, जस्ट कॉल हिम एंड यू आर सॉर्टेड। लोकेशन, प्रॉपर्टी, बजट, मार्केट सर्च, एवरीथिंग हरजिंदर गिल ते छड़ दवो। तुसी बस मठियाई दा डब्बा तैयार करो। हरजिंदर गिल 647-400-6862 और विजिट teamharjindergill.com, helping you to fulfill your real estate plans.
5: इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 647-400-6862 जी मीडिया ग्रुप।

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये राजधानी राजधानी राजधानी
0: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
2: इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 6974008 6474006862 जी मीडिया ग्रुप।
3: नजरिया प्रोग्राम नाल जुड़ चुके दोस्तों का हार्दिक ते निघा स्वागत। उम्मीद करदा कि ठीक ठाक होवोगे जी। जिहड़े दोस्त साढ़े नाल हुणे जुड़े ने उन्हां नूं निघी जी आखदे आ, क्योंकि अपना साथ 12 बजे रामस पंजाबी वीकेंड शो दे नाल हर एतवार वाले दिन बन जांदा है। 12 तों 1 रामस पंजाबी ते 1 तों 2 सुणदे हो प्रोग्राम नजरिया। मैं तुहाडा होस्ट मनजीत सिंह गिल। कोई भी गल्लबात तुसीं प्रोग्राम दे दौरान स्टूडियो च करनी होवे ते 416-233-7368 जां 8297 ते कीती जा सकदी हुंदी है। 416-233-7368 जां फिर 8297 स्टूडियो दे टैलीफोन नंबरस ने। कोई जानकारी, कोई इनफॉर्मेशन, कोई गल्लबात तुसीं करनी होवे ते इन्हां नंबरस नूं डायल करके कह सकदे हुंदे हो। जे 2 बजे तो बाद कोई भी गल्लबात करनी है प्रोग्राम के संबंध में, जां फिर रियल स्टेट संबंधी कोई जानकारी तुहानूं चाहीदी होवे ते फिर साढ़े नाल 416-669-1379 ते संपर्क किया जा सकता है। 416-669-1379 मेरा परसनल टैलीफोन नंबर है। और अज मौसम जिहड़ा काफ़ी स्लिपरी है जी, मीह काफ़ी पै रहा है। आई बिलीव कि हुण भी पै रहा होना है, क्योंकि मैं 12 बजे तो पहला की गल कर रहा कि उदों भारी मीह पै रहा सी बाहर। सो केयरफुली तुसीं ड्राइव करना अगर ड्राइव कर रहे हो अज तां, ते जेकर नहीं जाण दी किते बहुती जरूरत, क्योंकि जे अज छुट्टी वाला दिन है, लेकिन मेरा ख्याल है कि किते भी दूर दुराडे अज जाण दा कोई मौसम इस तरह का नहीं है कि फेवरेबल नहीं है। ड्राइविंग कंडीशन जिहड़ियां उह काफ़ी स्लिपरी ने, सो अवॉयड ही करो जे नहीं किते जाण दी जरूरत। ते डेफिनेटली तुसीं आराम दे नाल अपने बच्चों दे नाल अपने परिवारों दे नाल अज दा दिन है उसनों बता सकते हो, क्योंकि बच्चों दियां भी ये छुट्टियां दा आखिरी महीना है। सो जरूर तुसीं उहनां दे नाल जिहड़ा टाइम है वह घर बैठ के भी मेरा ख्याल एक बड़ा वैल्यूएबल टाइम जिहड़ा तुसीं स्पेंड कर सकते होंगे हो, उहनां दे नाल बैठ के कोई ना कोई तुसीं अपना कोई मूवी वगैरह जां वैसे ही कोई होर कोई गेम। अजकल तो बहुत डिजिटल गेम्स भी बड़िया ने, ते तुसी वैसे भी कोई गेम प्ले करनी घरे बैठ के बच्चों के नाल तो वह की जा सकती है। और मौसम का भी जिहड़ा लुत्फ है यहो जे मौसम का भी वह भी लिया जा सकता हुंदा। ते जे जरूरी जाना ही पैना तो फिर डेफिनेटली जी वह तो रुकया नहीं जा सकता, तो जरूर तुसी केयरफुली ड्राइव करते हुए अपनी मंजिल तक जिहड़ा वह पहुँचो। साडी दिली अरदास है तुसीं चढ़दी कला दे विच रहो। और लौंग वीकेंड है, लौंग वीकेंड दी एक बारी फिर तो तुहानूं शुभ शामां जी साडे प्रोग्राम दे वलों, साडे परिवारां दे वलों, साडे स्पॉन्सर्स दे वलों तुहानूं शुभ शामां ने इस लौंग वीकेंड दीआं। जरूर तुसीं इस नूं इंजॉय करो। और जो रहिंदा हफ्ता तुहाडा वह इस तों भी पिछले हफ्ते तो भी कितें वधिया होवे, ये असीं हमेशा ही अरदास करदे हां। साडी गल्लबात दा हिस्सा तुहाडे तक पहुँचाउण दे विच सानूं मदद पंजाबी बाय नेचर दे वलों मिलदी है। 416-937-2061 उन्हों का टैलीफोन नंबर है। ऑप्टिकल 1-905-455-0752 से संपर्क किया जा सकता है। तो ट्राई सिटी प्रोफेसनल रियल्टी ब्रोकरेज तो अवतार सिंह जी बडियाल हमेशा सपोर्ट करते हैं। 416-464-2067 से तुम उन्होंने गलबात कर सकते हो। 416-464-2067 अवतार सिंह जी बडियाल होर का टैलीफोन नंबर है। किंग टोइंग 416-677-2222 से संपर्क किया जा सकता है। अजिहे मौसम दे विच खास करके अगर किते किते जरूरत अपनी कार जां ट्रक नूं टो करवाउण दी पैंदी है, तो पूरे नॉर्थ अमेरिका दे विच सेवावां दिंदे ने किंग टोइंग वाले। 416-677-2222 उन्हां दा टैलीफोन नंबर है। 416-677-2222 से संपर्क किया जा सकता है। कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल 905-678-1200 से संपर्क करके तुसीं जानकारी ले सकते हो। एयर टिकट बुकिंग तुसीं दुनिया भर के किते भी जाने लई करनी है, तो फिर 905-678-1200 कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल वालों का टैलीफोन नंबर है। ਡਰੀਮ ਹੋਮ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ 905-805-3000 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੇਲ ਸਵੀਟ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ 6 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਟੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਤੇ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 905-799-2616 ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਗਿੱਲ ਸਵੀਟ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, 9057992616 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਜਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਆਟੋ ਰਿਪੇਅਰਸ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਾਰ ਸੇਲਸ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਾਡਾ ਜੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। 21-39 ਮਿਲਵਿਕ ਡਰਾਈਵ ਨੌਰਥ ਯੋਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਟਡ ਨੇ, 21-39 ਮਿਲਵਿਕ ਡਰਾਈਵ ਨੌਰਥ ਯੋਰਕ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਕਸ ਐਂਡ ਮਾਡਲਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਿਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਰਿਪੇਅਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜਨ ਟਿਊਨਅਪ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਟਿਊਨਅਪ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੈਲੋ ਸਟਿੱਕਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਊ ਬੈਂਡਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਊਲ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ, ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਹੀਟਿੰਗ ਐਂਡ ਕੂਲਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 416-747-6800 ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਆਟੋ ਰਿਪੇਅਰਸ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਾਰ ਸੇਲਸ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਾਡਾ ਜੀ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ 416-669-1300 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ।

0: हाँ हरमन कौरी
1: हाँ
0: दस फिर
1: मैं देख तेरी इस गल ना सीरियसली हो लग गई
0: हाँ हाँ
1: तू एवे कर जेडे प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजर्स नहीं होंदे
0: प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजर
1: हाँ मैनेज करना केड़ी चीज होनी चाहिए आ बच्चा केड़ी चीज जी फायदा पहुंचाऊगी समर कैंप के दौरान ये सारिया चीजा नु ऑर्गेनाइज कर दे तू बन जा
0: मतलब ये कि भी आपके बच्चे को जब समर कैंप पे जाना है तो क्या चीज चाहिए है फार्मस चाहिए बैग चाहिए दस्ताने चाहिए कोटी ऐसे मेरी गल सुनो ये काम मैं करूंगा तो मतलब बच्चे की मां की करूंगी फिर
1: भाई साहब जब बच्चे की मां नहीं करना तो उन्हें तेनू की करने रखना है
0: यार किद्दां दी मां हो गई जेड़ा अपने बच्चे दा चा नहीं करन दी ते ओ मेरे का ऑर्गेनाइजर लभदी फिरूगी उत्थे
1: हेलो
0: नाले एक मिनट हेलो एक्सक्यूज मी
1: हां
0: जेड़ा ओदा मेन ऑर्गेनाइजर ओ किधर गया
1: जिन्हें
0: बच्चा ऑर्गेनाइज किया पहले
1: एक्सक्यूज मी
0: पापा जी
1: थोड़ा ध्यान ना
0: हो वही मैं कह रहा ना
1: पापा जी कितना का काम करते होंदे ने दसी जरा मेनू
0: नहीं भावे कुछ भी दे दा ये थोड़ा
1: लेडीज ऑलवेज बच्चे भी देखन काम भी देखन घर भी देखन डॉलर भी देखन सारा कुछ देखन है हेलो
0: मैडम तू ना बीबी दी साइड ना जा मेरे वाले प्रोफेशन ते आ जवाक पाड़ दे बाद अगले पैसे ना देने फिर कौन जिम्मेवार
1: सिर जरूर पाड़ सकदा बाकी गल्लां दियां गल्लां
2: ऐ मेरे रब जी मेरा बिजनेस नहीं जे चलता बाबा जी बड़े पापड़ मेल मेल देख ले ने कोई गल नहीं बनती बाबा जी प्रसाद चढ़ाऊंगा $5 का प्रसाद चढ़ाऊंगा बाबा जी मेरा बिजनेस चला दियो
3: ओए मैनू क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं देव तातले नु कॉल कर रेडियो ते अपने कारोबार दी ऐड चला भाई स्पेशल पैकेज ने उना कोल फोन कर 416-677-0609 416-677-0609

0: Ladies and gentlemen, introducing from CHLO AM 530, the number one radio host in the world, Dave Tatla!
1: नून वेलकम टू डेव टाला शो। आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों आप सबका स्वागत है। आशावादी उम्मीद करते हैं तुहाडा अज दा दिन अच्छा गुजरिया होवेगा। साडी कोशिश रहेगी कि तुहाडे अगले एक घंटे विच तुहाडे पैसे दी बचत की जाए, चाहे वह ब्रैम्पटन टीवी अपलायंसेस होए या फिर ग्रैंड फर्नीचर होए। इस वीकेंड ते लोंग वीकेंड है, बहुत वधिया वधिया प्राइज़ तुहानू मिल रही ने, उन्हां दा फायदा जरूर चको। साडे नाल सुल्तान जी स्टूडियो विच जुड़ चुके ने। सुल्तान जी पुराने स्वागत है, की हाल है?
2: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: सुल्तान जी वधिया वीकेंड है, वधिया दिन लग रहे हुए ने ते वधिया वधिया प्राइज़ भी देणियां ने। आपां टेलीविजन वाले पासे शुरू करदे आ।
2: मेन चीज ए है जी के ए है ब्लैक फ्राइडे इन जुलाई।
1: हां जी,
2: ए वेरी स्पेशल इवेंट हुंदा।
1: हाँ।
2: जीई फ्रिजडेयर, फ्रिजडेयर गैलरी एंड प्रोफेशनल दे नाल नाल बॉश जर्मन ब्रांड है, सोनी एंड सैमसंग पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
1: ते
2: क्योंकि 31 तारीख नूं एक जुलाई मंथ खत्म हो गया, आज 1 अगस्त है, पर लॉन्ग वीकेंड होने करके जेड़े कस्टमर इस टाइम एदा एडवांटेज लेना चाहुंदे उन्हां वास्ते ए बेस्ट डील है, लास्ट कॉल है के ब्लैक फ्राइडे बॉक्सिंग वीक प्राइसिस इन जुलाई तुहानू मिलनगियां। जदों तुसी टीवी सैक्शन दी गल कीती है ते देखो तुसी अज तक ना सुनिया होना।
1: हाँ जी।
2: ना मैं भी अज तक वेचिया, ना कस्टमर ने लाए होने हैं।
1: हाँ जी।
2: 50 इंच टीवी 299
1: 50 इंच टेलीविजन सिर्फ ते सिर्फ 299
2: 55 इंच टीवी 399
1: दा 55 इंच टीवी
2: 65 इंच टीवी
1: 75 इंच
2: कदी किसी ने लिया, फैक्ट्री सील्ड ब्रांड न्यू डब्बे च बंद हो भी 75 इंच 699
1: लो जी। 75 इंच 699 दा,
2: 65 इंच 599, 55 इंच 399, 50 इंच 299 ते पेमेंट भी 6 महीने च करनी।
1: कोई अच्छा जेडी पेमेंट 6 महीने च करनी है, अज लै जाओ कल नू लै जाओ जिदन लेके जाओगे उदो 6 महीने गिनने आ। ते ब्याज कोई नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, टेलीविजन तुहाडे घरे लग्या होएगा।
2: 6 महीने च पे करोगे, फ्री डिलीवरी मिल जानी है, 1 साल की पार्ट्स एंड लेबर वारंटी है, 4K UHD अल्ट्रा हाई डेफिनेशन स्मार्ट टीवी है, गूगल फीचर्स दे नाल, इहदे च तुहानू ऐप स्टोर मिलेगा, अनलिमिटेड ऐप्स तुसी डाउनलोड कर सकते हो। इहदे लई पहुंचना है तुसी brampton appliances.com साडी वैबसाइट सर्च करनी है, या तुसी 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट जस्ट ईस्ट ऑफ चंकूजी ऑन बोवेड ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसिस ते पहुंचना है, या फिर तुसी टिकटॉक ते ब्रैम्पटन टीवी ऐप, ब्रैम्पटन टीवी APP, ब्रैम्पटन टीवी ऐप सानू फॉलो करना है ते उत्थे देखना है कि अज कैसियां स्पेशल प्रमोशन्स जेड़ियां वो दित्तियां जा रही हैं। ब्लैक फ्राइडे प्राइसिस इन जुलाई ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसिस ते 905-450-2828 ते ए ना सोचियो कि इर्च तां 85 इंच बोलिया ही नहीं।
1: हाँ जी।
2: इर्च तां 98 इंच बोलिया ही नहीं।
1: हाँ जी।
2: 85 इंच ते भी $700 की सेविंग है।
1: बोले
2: जे सोनी ब्रेविया मॉडल लेना है ते सोनी ब्रेविया 3 मिलेगा।
1: अच्छा जी।
2: ते ओ भी $2200 तो $1599 दा
1: 85 इंच।
2: 85 इंच
1: ठीक है।
2: ते जे तुसी सैमसंग लेना है ओ भी मिनी LED मिलेगा, लेटेस्ट 2026 दा नवा मॉडल, ओ भी $1599 च। $700 तुसी 85 इंच ते भी सेव करने हैं। ते जे 98 इंच लेना है $1500 दी सेविंग,
1: पंद्रह सौ
2: दी सेविंग है। $3500 आला 98 इंच $1999 भी 6 महीने च पे करना।
1: समान कोई ले लो ब्रैम्पटन टीवी प्लांट से, तो चाहे फ्रिजां दी भी गल करदे आं, उत्थे मसाज वाली चेयर आ उहदी गल करदे आं, सारियां गल्लां करदे आं। पैसा जिहड़ा समान लेना 6 महीने दे सकदे हो, तुहाडे कोल चॉइस आ, ब्याज कोई नहीं लगेगा। एड्रैस है 801 ਕਾਲ
2: ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ ਲੈਣਾ ਹੋਲਡ ਕਰਾ ਦੋ, ਫਿਰ ਸ਼ੋਰੂਮ ਚ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਕੇਜੂਲ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਲੋਐਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਹਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਟੀਵੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 4K ਸਮਾਰਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ 905-450-2828 905-450-2828

0: For advertisements and information,
1: Sadi head office nu call karo 416-725-2551 416-725-2551.
2: Study visa, express entry, Canadian express entry, spousal file, parents PR, super visa, nanny, work permit, farmer, investor, ya self-employed di file. Gal ki immigration di har problem da solution lain lai, community de jaane pehchane ate tajrubay kar immigration consultant Gary Wirk nu milo.
3: Koi case refuse ho gaya ya appeal te chala gaya, hove immigration da koi bhi masla, hamesha yaad rakho ikko hi na ate ikko hi tha. CIC Immigration, hune hi call karo 416-456-6161. Cart 416-456-6161.
4: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग ले
5: ऐसे ले मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सम्राज सिद्धू तो ही करवाई है
6: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सम्राज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने पेरेंट्स ले सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट ले हुणे कॉल करो 416-453-3381 ते 6457-3381
4: नाली जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाओगे हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-456-3381 416-457-3381